ना चौथा हर के जानो सतगुरु सत पुरखाओ बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुरु सरनाई कर दया नाम प्रगा

रहाओ। अर्जन के बड़ भाग वडेरे, दिन हर हर सरदा हर प्यासे, हर हर नाम मिला तृप्ता सहाय, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पासे। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिक जीवे त्रिक जी बासे। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, चिम तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। रागु जरी महला पंजवा, काहे रे मन चित बह उदम, आहर हर जीव परया। सैल पत्थर मह जंतु पाई, ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरी माधु जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक सुम्बाहे ठाकुर, काहे मन पहु करिया। उडे उडया वैसा कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन महि सिमरन करिया।

प्राण जो सेवा है तुरजी जान नानक तेन कुर्बाना हर त्यावे तुरजी से जन जुग मह सुख वासी से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फांसी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिनका पहो सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बन जासी तेरी भगत तेरी

द्वार तो है, अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहि में किंकर थारा, दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियो संघारो, प्रथम तरो भगवत को त्याना, बहर करो कविता विदनाना, कृष्ण जत्था मत त्रित्र चारो, चूक होए कवनो सुधारो, कभी बाज दोहरा, जो निज प्रम सो कहा हूँ जब माहे, जो ते ही प्रभु को त्याए है, अंत सुरु को जाहि दोहरा, हारो हर जन दो एक है, बेविचार कठ नाहे, जल ते उपत रंग जाऊं, जल ही विकास समाय दोहरा, जब आए सो प्रभु को पयो, जन्म तरा जब आए, अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कहत सुनाए, का बाचू दोहरा, ठाड पयो मैं जोर करो, बचन कहा सिर न्याई, पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहरा।

मेरा कानपुर की देह मो कोटक बेसन महेश को टंदर ब्रह्म किते राक्षस करोर जले सों दोहरा राम कथा जुग जुग अटालो सब कोई भागत नेतो स्वर्ग वास रग बरकरा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुन अर गावे दुग पाप देह निकट में आवे बेसन भगत की ए पढ़ होई याद बया छप सके न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लहलो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तर तद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण की राघवर कथा प्रसंग राघवर कथा प्रसंग दोहरा राम कथा जुग जुग अटालो सब कोई भागत नेत स्वर्ग वास राघवर करा सगरी पुरी समेत सगरी पुरी समेत दोहरा जब आए प्रभु को पयो जन्म तरा जब आए अब मैं कथा सुन छेपते सब कैत सुनाए काबा दोहरा हाड़ पयो मैं जोर करो वचन कहा सिर न्याय पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करे सुहाए दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याए है संत अंत लहंगे मुक्त फल पावहंगे भगवंत दोहरा कानपुर की देह मोह कोटक बिस्म में है सो कोटिंदर भ्रमा किते राक्षस करोर जले दोहरा राम कथा जुग जुग अटालो सब कोई भागत नेतो स्वर्ग वास रघुबर कराओ सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुन अर गावे दुख पाप ते मुक्त न आवे बेसन भगत की ए फल होई याद बया छुप सके न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन प्रसाद जो एह कथा सुन अर गावे दुख पाप ते मुक्त न आवे बेसन भगत की ए फल होई आद बया छुप सके न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन प्रसाद करु ग्रंथ सुधारा भूल परि लहलो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तारु तद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण की राघवर कथा प्रसंग साध असाध जानो नहीं बास बाद वे बाद ग्रंथ सकल पूर्ण की भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गए हैं जब ते थमरे तब ते को आख तर नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने श्री अस्पान कृपा तुमरी करो मैं न कह सब तुहे बखाने दोहरा

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु ने पाया सतगुरता पाया सहज सिती मन बजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दों तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया।

करते रह सचा नामी आधारो सतनाम धर्मी रहो जिन भुखा वो सब गुबाइया कर शांत सुख मन वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु वटा हो जिस दिया यह वडियाइया कह नानक सुन हो संत हो शब्द धरो प्यारो सचा नामी आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित करत हरिया

नित्य नित्य रखो और तहरो तम संसार चरण लग तरियाए सब नानक ब्रह्म प्रसाद श्रोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नहीं मन जोग की तोई

हर श्री हर गोबिंद, हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद, दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद, जिस मह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग, गुरु ग्रंथ साहिब उदद

बहु वद है विकारा राम, बहु वद है विकारा, सहसा इहु संसारा, बिन नावै पत कोई। पढ़ पढ़ पंडित वाद बखाने, बिन

परलोक गवाया बास की दुखे अनसो बैठ के ऐसे ही ऐसो सो बैस बतायो सात कहो सरलो सबाए जिन प्रेम की उतनी प्रपायो काहू ले पाहन पो धरियो सिरो काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लखे हर अवाची दिशा में काहू पछाह को सीच नवायो को बतान को पूछत है पासो को मृतान को पूजन तायो को क्रिया और जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो को बतान को पूछत है पासो को मृतान को पूजन तायो।

को मृतान को पूजतायो वो क्रिया और जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबे बात बेनती चाव पई हमरी करो आदर छाव पूर्ण हो चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दोष सब तुम काबू आप हादय मोह बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दाय करिय सब बैरन को आसन करिय पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ को यवन त्याऊ जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारी तारिया है चौन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हादय मुझे मरे आई मरण काल का त्रास मरे आई जो सदा हमारे पछाव श्री अस तो जो कर हो रक्षा राख ले हो मोह रखन हारे साहु संसहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता उत्तम हो पुरे चातुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा मुक्तराम काल पाए सब्जू अवतराम काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का की आत्मासा जमन काल जोगी सब की ओ वेदराज ब्रह्मा ज्योति ओ जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार होता हमारा नमस्कार है ताहि मारा निमकार सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत कै अवतार सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पाल मो बत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बड़े की पीर पछानत चिट्ठी ते कुचर असूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान कट कट के पढ़ पढ़ की जाने जबद कर करा कर तारा पर जाता तब देह पारा जब अकर कर तो हो कब हो तुम मैं मृत देह धर सब हो जिते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझो चारा तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बीत भेद हर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनीला नाद सब

पार्वती रत्न पे आपे अपनी बुद्ध जीती बलत पेन पेन तो हित ती तुम्हारा लखा न जाए पसारा।

खान बहुरत दिनी। कहूँ तू राजा हूँ बैठाऊँ, कहूँ सिमट पर शंकर कठाऊँ। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आदि युगाद स्वरूप जम्पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सेखो बार सेख संघरो। दोट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे आस तो जो तब सरनी परे, तिनके दोष दुख तो हमारे। पुरख जाऊन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो

न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असमान कृपा तुमरी करू मैं न कहूं सब तोहे मखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के

गोबिंद दास तुहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सगुरता पाया सहज सेती, मरवजिया बधाइया। राग रत्न परवार परिया, शब्द गावण आईया, शब्द होता गावो हरि केरा, मन जनी मसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो, हर नाले हर नाल रहो तू, मन मेरे दुख सब सारना। अंगीकार ओह करे तेरा, कर सब सुवारण, सबना गल्ला समर्थ स्वामी, सो क्यों मन हो सारी। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही, घर तेरा ही घर तां तेरा, सब किच है जिस देह सो पावे। सदा सबत सनाह तेरी, ना मन मुसावे, नाम जिन कह मन मुसिया, वाजी शब्द कनेरी। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही, घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु वट्टा हो, जिस दियां एह वड्याइयां। कह नानक सुन हो संतो, सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दो तो तदवास कीते, काल कंट कुमारिया, तुर कर पाया तुर जिन कहो, से नाम हर का नागे। कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देहन माणी।

निबुजता सदगुण संतों का धर्म गिरथवा त्रेता रजते का जोर गिरथवा हो द्वापर तपे कस तेर सत गिरथवा

ओंकार सतगुरु प्रसाद हर का नाम ध्याए कै हो हरिया पाए कर्म लिखन ते पाए ए रुत सहाई वन त्रिण त्रिभवन मौलिया अमृत फल पाए मिल साधु सुख उपजै नथी समशाई।

बसंत की वार महल पंजवा ओंकार सतगुरु प्रसाद हर का नाम ते आए कै हो हरिया पाए करम लिखन ते पाए ए रुत सहाई बन त्रिण त्रिपवन मौलिया अमृत फल पाए मिल साधु सुख उपजे लथी समशाई नानक